0: 봐요지금
1: 사태를그야다मैं लेकर हाथ करे, मैं ले उन्हें हर को मन दुखाए, मैं ले गलती करे कुछ, मैं ले माफ करो, मैं ले आपने

0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: लस्सो है मेबे फेबेमा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिम प्रे रखोरमा नग फारममा असिम टमाटर की टनेलमा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंके सुर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो होई रोमा हुजुरी मी दिम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तरला जम्मन सामानमा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम दिम सम्मन बोरबारी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी संपर्क नंबर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिंगजिम सेगो है रोमा
2: इंटरटेनिंग द नेशन।

0: आवाज को सीआरबीटी 0144-11-697
1: महिला आवाज को सीआरबीटी 0144-11-698
0: पुरुष आवाज को पीआरबीटी 7121-033-8
1: महिला आवाज को पीआरबीटी 7121-033-9

0: सीआरबीटी 014-00-11-697
1: महिला आवाज को सीआरबीटी 014-00-11-698
0: पुरुष आवाज को पीआरबीटी 6021-033-8
1: महिला आवाज को पीआरबीटी 6021-033-9